सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना

0: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 3। आज के मेहमान हैं नेहा धाकड़, प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप।
1: हम सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज मैं थारे ते रूबरू हूँ कार्यक्रम घर परिवार में। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त दीपक कश्यप। आज मारे मेहमान है नेहा धाकड़। नेहा जी, थारा स्वागत है FM 90.0 MHz पर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, जो आपने मेरे तो यो मौका दिया और मनु यहाँ बुलाया। मेरा नाम नेहा धाकड़ा और हम फतेहपुर गांव में रहा, और जो मेरी स्टडी है वो मैंने प्लस टू नगला स्कूल, जो मेरे गांव के थोड़ी दूर था, वहां से करी। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपनी मास कम्युनिकेशन ते गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अम्बाड़ा कैंट ते करी। उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा कराया PGDGMC मास कम्युनिकेशन का ही, पंचकूला गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेक्टर 1 ते। उसके बाद फिर मैंने PT की, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश।
1: तो नेहा जी, आज का हमारा विषय है आज का युवा। जैसा कि आपने बताया कि हम गांव में थे पढ़ने वास्ता बाहर जहाँ थे, जिस तरह आज का युवा पढ़ने वास्ता बाहर जहा, तो उसनों किस तरह, कितने साधन आवा या किस तरह जहा आवा?
2: जिस तरह मैंने अपनी सारी स्टडी, जो भी मैंने पढ़ाई करी, वो गांव थे बाहर शहर में का ही करी, तो मतलब आज के टाइम में साधना का बहुत पर्याप्त मात्रा में मतलब साधन है गांव में। जिस तरह पहला एक बस हो, एक राती बस, उसका टाइम था भी 8 बजे आना सवेरी, जिस तरह बच्चे कॉलेज में जहाँ थे, जो भी यूनिवर्सिटी जहाँ भी पढ़ रहे थे स्कूल कॉलेज में, तो उसके बाद वो 2:30 बजे या फिर 5 बजे ऐसा टाइम था उसका। लेकिन आज के टाइम में गाँव में दो दो बसा लग रही, ऑटो वगैरह, मतलब मैजिक, सारी चीजा की फैसिलिटी है। और आज के टाइम में एक फैसिलिटी हो रहा है कि आज घर घर में साधन है, जैसे मोटरसाइकिल या कार वगैरह या स्कूटी वगैरह, मतलब हर घर में साधन है। आज के टाइम में फैसिलिटी ज्यादा मिलने लगी बच्चे नू, और जिस तरह बच्चे गांव में शहर में पढ़ने आवा तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं होती।
1: जब लड़के लड़कियां पढ़ने वास्ते दूर जहां, तो उन्हें कुछ मुसीबत का सामना भी करना पड़ा?
2: हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने भी अपनी सारी 5 साल स्टडी बाहर ही करी है, गोमत एक शहर में आई, तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि बस वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा हुआ। और इस चीज में मैं कहूंगी कि लड़कियां नू ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, मुश्किल का सामना इस टाइप से करना पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने पहला भी बताया कि लड़के लिफ्ट लेकर जा सका, लेकिन लड़कियां लिफ्ट लेकर नहीं जा सकती। तो जैसे भीड़ हुआ बस में बहुत बहुत, तो फिर जैसे लड़के हुआ वो तो बाहर भी बारी पर भी लटक का चले जहाँ, लेकिन लड़कियां उसमें लटक नहीं सकती। कई बार बसा नहीं मिलती तो उन्होंने बसा के पीछा भागना पड़ा। कई बार ऐसी सिचुएशन हुआ भीड़ के अंदर जिसमें मैं शायद शब्द में नहीं बयां कर सकती, और उस चीज़ नू सिर्फ वही समझ सका जिसने चीज फेस करी हो। क्योंकि मैं जैसे मैंने कॉलेज में पढ़ी, तो फिर मैं बसा में ही मेरा आना जाना था, तो उस चीज नू वही इंसान समझ सका।
1: तो इसका क्या समाधान हो सका?
2: हाँ, लड़कियां नू बहुत ही मुश्किल हुआ जैसे बसा में, तो इसका यही समाधान है कि मतलब लड़कियां वास्ता कोई अलग से बस की सुविधा होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ लड़कियां, लेडीज, औरतें ही ट्रैवल करा, और मतलब जैसे कंडक्टर हुआ बस की, तो मतलब लड़की हो, ताकि उन्होंने कंफर्टेबल फील हुआ कि हाँ, मतलब किसी टाइप से वो अपने आप नू यूं ना महसूस करा भी हाँ हम यहाँ खड़े या कुछ ऐसा। और मतलब इसके लिए कुछ टाइम तक ये सर्विस मिली भी, कुछ बस चलाई गई जिसमें सिर्फ लेडीज ही ट्रैवल कर रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सर्विस बंद कर दी जा। और एक सिस्टम हो रहा, मतलब जैसे बस की बारी हुआ, तो मतलब ऐसा सिस्टम कर लें कि जो फर्स्ट वाली बारी उस पर सिर्फ लेडीज ही मतलब चढ़ांगी बस में, जो पिछले वाली बारी उसमें बॉयज या जेंट्स ही चढ़ सका। तो मतलब इस टाइप से कुछ सिस्टम बनाना चाहिए ताकि जो हमारी लड़कियां हैं या हमारी औरतें, उन्होंने पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना हो, और वो अपनी पढ़ाई नू अच्छे तरीके से आगे तक लेकर जा।
1: तो जिस तरह आप बस में पढ़ने जहाँ थे, बस में सफर करा थे, तो वहाँ आप किस तरह टाइम अपना स्पेंड करे करा थे?
2: हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह मैं अपने गांव ते यहाँ बाड़े वास्ता हूँ थी, तो थोड़े टाइम का ही रास्ता हुआ था, उसमें मैं मतलब यही कि सॉन्ग सुन लिए या कुछ जैसे अपनी स्टडी से रिलेटेड पढ़ लिया, कुछ करंट अफेयर मेरे पास सब्जेक्ट था, तो मैं न्यूज़पेपर ले लूँ थी बस स्टैंड से, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ती आंदी रहूँ थी रस्ते में। लेकिन कई बार जैसे न्यूज़ पढ़ का भी बंदा, तो कई बार जैसे न्यूज़ पढ़ ली उसके बाद फिर मैं कुछ सॉन्ग वगैरह सुन लूँ थी। और जैसे मैंने पंचकूला करी अपनी पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो बहुत ही लंबा सफ़र था, और उसके साथ साथ ही मैं गाने सुन लिया करूँ थी, इंजॉय करें अपना सफ़र।
1: अच्छा, तो आपका कोई फेवरेट सॉन्ग मारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे आप?
2: बिल्कुल, मैं ज्यादा मतलब जो गीत होते हैं वो जैसे हिंदी भी सुन लो या फिर पंजाबी, जैसे मेरे फेवरेट सिंगर सतिंदर सरताज जी और एमी विर्क जी हैं, तो मैं सतिंदर सरताज जी का एक सजन राजी गाना थोड़ा सा आप नूं सुनाना चाहूंगी। प्यार हुंदा फुल्लां तो मलूक सोहणिया, जिवें हुंदी मोरनी दी कूक सोहणिया, दूर किते जंगलां च नचदी फिरे, शहर तक सुन जांदी हूक सोहणिया। सजन राजी हो जवे फिर वी ओ रोला नहीं ओ पाईदा पागला।
3: प्यार हुंदा फुल्लां तो मलूक सोहणिया,

0: चला अपने कार्यक्रम की तरफ। जब आप कॉलेज में पढ़ा थी तो आपके पास कौन कौन से विषय थे?
1: जी मैंने जिस तरह ग्रेजुएशन भी जनसंचार ते करी है, मास कम्युनिकेशन ते, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी, तो मेरे पास यही सब्जेक्ट थे जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटोग्राफी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, करंट अफेयर, यही सब्जेक्ट थे मेरे पास मेन। और मैंने मतलब इन्हीं सब्जेक्ट्स में अपनी स्टडी करी है, तो स्टडी के साथ साथ मैंने एक्टिविटी जो कॉलेज में परफॉर्मेंस हुआ थी उनमें भी पार्टिसिपेट करा, जैसे डिबेट होगी, भाषण प्रतियोगिता होगी और कविता होगी, और जैसे मेरे पास कॉलेज में जैसे एनसीसी होती है, एनएसएस होती है, तो मैंने एनएसएस में भी पार्टिसिपेट कर रखा था, और उसमें जैसे कैंप वगैरह लगाते तो मैं उनमें भी जाऊँ थी।
0: घर में अपना समय क्या करने में बितावा आप, जो आपके पास आपका खाली समय हुआ किस तरह बतावा?
1: जी जिस तरह मेरा खाली टाइम हो आज, जिस तरह पहला तो मैं अपने घर का काम करूँ, सारा झाड़ू पोछा अपना, सारा जितना भी काम हो घर का एक, तो उसके बाद जैसे फिर फ्री हो जा काम करने के बाद, तो जैसे मैं अपनी कोई स्टडी से रिलेटेड या मतलब जो मेरा प्लानिंग है फ्यूचर में उससे रिलेटेड मैं कुछ काम करूँ, मतलब कोई बुक्स वगैरह या कुछ भी जो भी पढ़ना होगा उसके लिए वह करूँ। फिर उसके बाद मतलब मैं कुछ टाइम अपना एंटरटेनमेंट करने वास्ता जिस तरह सॉन्ग सुनूंगी या कोई मूवी देखूंगी, फनी मूवी, कोई मूवी वगैरह देख लिया तब भी टाइम नहीं स्पेंड हो रहा, तो मैं यूट्यूब से कोई रेसिपी देख लूँ नवी की, कुछ नया बनाया जा कुछ अलग सा, इस टाइप से मैं अपना टाइम स्पेंड करूँ।
0: तो आपने खाने में क्या क्या बनाना हुआ?
1: खाने में जिस तरह अपना रोटी सब्जी है तो सारा ही आवा, जैसे कोफ्ते या रायता या फिर कड़ी चावल, मक्की की रोटी होती है वो भी बना लेती हूँ, गेहूं की रोटी तो चलो सभी बना लेते हैं, मतलब सारा काम जो भी रसोई का काम होता है सारा काम कर लेती हूँ मैं।
0: कभी कुछ आपने बनाना कुछ और चेहरे या बन गया कुछ और, ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई या?
1: हाँ जी बिल्कुल, मेरी साथ मतलब अभी कुछ टाइम पहले एक घटना हुई थी, जैसे मैं ना मतलब सोच रही थी बहुत, मम्मी ने बोला अभी खाना बना लो आप, तो उस टाइम मैंने दाल बनानी थी, जैसे मूंगी मसरी की दाल हो अपनी, तो वो दाल बनानी थी मैंने, तो मूंगी की तो डाल ली, फिर उसके बाद मैंने उसमें डालनी थी मसरी की, लेकिन उड़द की डाल दी, वाइट उड़द वहाँ जो, तो फिर मैंने देखा मैं कि इसका कलर तो वाइट है, डालनी तो मैंने संतरी ऑरेंज कलर की थी, तो फिर सोचा अब क्या करूं, फिर मैंने वो भी डाल दी, तो वो तीन टाइप की दाल होगी, तो फिर मैंने जैसे वो दाल बन गई तो मैंने मम्मी को पहले ही बता दिया, मैं कहा मेरे पते आज गलती होगी यार, मैंने यह दाल तीन टाइप की बना दी, तो कह रही चलो कोई नहीं, जब उन्होंने खाई तो उन्होंने अच्छी लगी, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि गलत किया यूं किया।
0: तो थारी कोई फेमस रेसिपी जो आज थारे घर के अनु बड़ी पसंद हो?
1: बिल्कुल हाँ, मतलब जो मेरे रिश्तेदार आवा या मतलब मेरे फैमिली वाले, उन्होंने मेरे खीर पूड़े बहुत ही ज्यादा पसंद है, कि मतलब जैसे मेरी सिस्टर जिनकी शादी होगी है ना, तो वो जैसे बोलना तो कह रही भी नेहा इब हम आ रहे मतलब घर, तो खीर पूड़े बना दे अपने हाथ के, मनु वो बहुत पसंद आ। उसके साथ ही मतलब मैं और सारी चीजें जैसे गुलगुले हुआ अपने वो भी बना लूं, मतलब और भी सारी रेसिपी बना लूं, लेकिन जो मशहूर है जो मेरी रेसिपी वो खीर पूड़े ही हैं, तो मेरे रिश्तेदार सब या मेरे फैमिली वाले खीर पूड़े मेरे बहुत ही पसंद करा, तो खीर पूड़े बनाने वास्ता हमनू पहला जिस तरह खीर हुआ, तो खीर वास्ता दूध नू रखो गैस पर या चूल्हे पर जिस पर भी आप बना रहे, तो दूध नू उबाल, जब तक उसमें उबाल नहीं आता तो उसमें चावल ना पाओ, जैसे चावल मतलब एक तो चावल हुआ मतलब लंबे वाले, लेकिन उसमें ना किणकियां वाले चावल यूज करने चाहिए, उसकी ज्यादा टेस्टी बना खीर, जब उसमें दूध में उबाल आ जाए तो उसमें जो किणकियां वाले चावल है उसनू पानी में अच्छे तरीके से धो का, थोड़ा टाइम पहला भगो कर रख दो उसनू ताकि वो अच्छे हो जाए मतलब गल जा, तो फिर उसनू चावल नू डाल दो खीर के अंदर, फिर उसनू पकाओ बिल्कुल, जब तक ना चावल और दूध आपस में मिल ना जा तब तक वो गैस बंद ना करो, हल्की आँच पर उसनू पकाते रहो, उसमें ड्राई फ्रूट डाल सका, काजू जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, किशमिश वगैरह, और जो ये तो खीर बन गई जैसे हमारी, तो फिर पूड़े वास्ता आप क्या कर सका, जैसे आटा ले पहला गेहूं का आटा हुआ, तो गेहूं के आटे में आप जैसे चीनी की चाशनी या फिर आपके घर शक्कर की चाशनी या गुड़ उसकी चाशनी नो ऐड करो, तो आटा मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा करड़ा भी नहीं होना चाहिए और पतला भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा आटा होना चाहिए ताकि जैसे हम उसनु तवे पर गेरेंगे तो आराम से उठ सका, तो उसनु मिक्स करके आप उसमें काजू बादाम डाल सका, अगर आपकी इच्छा इलायची छोटी इलायची कूट का इलायची डाल सका, फिर उसनु आप तवे मतलब तवा बिल्कुल ही अच्छे तरीके से साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर तवे पर बिल्कुल कुछ रह गया मतलब तवा साफ ना करेगा तो वो जो हमारे पूड़े वो तवे से उठने के नहीं है, वो वहीं चिपक जाएंगे, तो तवा अच्छे तरीके से धोना होना चाहिए, और फिर उसनु पूड़े नु हम जो आटे का गोला उसनु हम तवे पर गेर दें, और फिर उसनु सारे तवे पर फैलाने वास्ता जैसे हम तो यूज गाँव में तो जो जामण का पत्ता हुआ उसनु यूज करा, जामण के पत्ते दे उसनु सारे तवे पर फैला दे, फिर उसकी साइड में घी तेल जो भी आपके पास है वो डालना, फिर उसनु उठा लें हल्के दे, और फिर इस तरह हमारे पूड़े तैयार हो जाओ।
0: क्या आप हमारे श्रोताओं को कोई और अपना मनपसंद गाना सुनाना चाहोगे?
1: जी बिल्कुल, जैसे मैं पंजाबी सारे ही गाने सुनो, हिंदी पंजाबी, तो मतलब हरियाणवी एक सॉन्ग है वो भी मैनू बहुत ही अच्छा लगा, जिप्सी सॉन्ग है वो, हरियाणवी सॉन्ग।
0: तो क्या आप हमारे श्रोता वास्ता थोड़ा गुनगुनाना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हो सहजो

0: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमारा आज का कार्यक्रम है घर परिवार। तो नेहा जी, आज का जो युवा है वो टेक्नोलॉजी का कितना प्रयोग करा और कितना जुड़ा है उससे?
1: जी बिल्कुल, आज का जो युवा वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहा। आज के टाइम में मतलब जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्होंने जो भी मटेरियल चाहिए पढ़ाई के रिलेटेड, अपना सर्च करो और सारा मटेरियल मिल जा। और जिस तरह जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, जिस तरह मानू पूछना भी पुराने टाइम में मिट्टी के बर्तन हो कराते उनमें क्या खाना बने कराता कुछ भी, तो हम अगर सर्च करांगे तो उसमें बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी और मतलब पता लग जाएगा भी हाँ मिट्टी के बर्तन का कैसा कैसा प्रयोग हो अतर क्या क्या उनमें दाल सब्जी बनावा थे। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई और युवा बहुत ज्यादा इसका यूज कर रहा। युवा भी लगा लो, आप बुजुर्ग भी लगा लो, सब इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं आज के टाइम।
0: तो जिस तरह हमारा आज का युवा टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी है हमारी जिंदगी पर?
1: जी बिल्कुल, वही मतलब एक बात दीपक जी मैं आपनों कहना चाहूंगी भी हर चीज के दो पहलू हुआ, एक सही हुआ एक गलत हुआ, एक अच्छा हुआ एक बुरा हुआ। तो ऐसी टेक्नोलॉजी में इसके भी दो पहलू हुआ, एक अच्छा एक बुरा, इसनू दो तरीके ते ही ले रहे हैं मतलब अच्छा बुरा। तो जिस तरह यूज कर रहे इसनू मतलब हाँ इसमें बहुत अच्छी चीजें भी आवा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी आवा जो शायद जो देखने लायक नहीं होंगी। तो मतलब युवा जैसे कोरोना के टाइम की मैं बात करूं, ऑफलाइन पढ़ाई तो बंद हो गई थी तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी, तो स्कूल में बच्चों को फोन दिए गए टैब 10वीं और 12वीं वाले नु, तो बच्चा ने मतलब वो सिर्फ पढ़ने वास्ते दिए गए थे उसमें, उस टाइम वो ऐप थी जिसमें सिर्फ पढ़ाई की बात करी गई थी उनकी क्लास से रिलेटेड, लेकिन बच्चा ने उसमें उसके अंदर सोशल मीडिया और अलग अलग ऐप डाउनलोड कर लिए, गाने सुनना या मतलब बच्चे उस चीज पर बहुत ज्यादा गलत की तरफ लेकर चले गए। मतलब दिए थे तो वह सही यूज वास्ते लेकिन उसने गलत यूज कर लिया उन्होंने, तो टेक्नोलॉजी का गलत यूज भी हो रहा कहीं ना कहीं मैं कहूंगी आज के टाइम में।
0: तो जिस तरह हमारे गांव के बच्चे हुआ या किसी भी स्कूल के बच्चे हैं, तो वो स्कूल में जहा और वे गेल फोन लेकर जहा, तो क्या है वो ले जाना अच्छा?
1: नहीं बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं अपनी बात करूं या मेरे टाइम थे थोड़े टाइम की पहला, तो अगर मतलब बच्चे के पास अगर फोन मिल जाता स्कूल में तो उसने बहुत पनिशमेंट दिया थी, बहुत ज्यादा मतलब उसने घर उसके बताया जाता भी हाँ इसके पास फोन मिला। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो बच्चे मैं देखूं जैसे मैं ट्रैवल करूं बस में भी या मैं जैसे अपने कॉलेज टाइम में मैंने देखा, तो बच्चे फोन का यूज बहुत कर रहे और जो स्कूल के 10वीं 12वीं के बच्चे वो भी फोन लेकर स्कूल में जा रहे हैं, ये फोन ले जाना स्कूल टाइम में। जैसे मैं बात बताऊं जैसे 10वीं 12वीं यही बच्चे का एक बेस हुआ जहां तो उसने कुछ करना या आगे बढ़ने की प्लानिंग करा भी हाँ, लेकिन वो बेस यहीं ते खराब हो जा, फोन में ध्यान दे रहे तो फोन में वही सोशल ऐप या फिर म्यूजिक तो उसी गेम खेल रहे हैं। बहुत सी गेम बैन भी करी गई, बच्चे बहुत ज्यादा यूज करने लग गए थे, गलत लग गए थे करने अपने साथ, तो इस टाइप से बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। तो मतलब जब बच्चे फोन का यूज कर रहे तो माँ बाप नु भी देखना चाहिए भी मेरा बच्चा फोन में क्या देख रहा क्या नहीं। तो यह ड्यूटी मतलब बच्चे की नहीं एक माँ बाप की भी बना कि उसनु अपने बच्चे के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चा फोन कब तक यूज कर रहा क्या देख रहा, और एक लिमिट होनी चाहिए फोन देखने की, है ना। यूं नहीं कि बच्चा सवेर ते फोन देख रहा शाम तक देखता ही रहा देखता ही रहा, अगर उसनु फोन ना दे तो वो रोन लग जा कि मैं फोन नहीं दिया मैनु, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप नु भी थोड़े रूल रेगुलेशन करने चाहिए बच्चे के प्रति।
0: तो हम भी एक युवा है और आज के युवा नु आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी हाँ बिल्कुल, मैं भी एक युवा हूँ तो मैं युवा होने के नाते यही संदेश देना चाहूंगी कि जो हमारे माँ बाप हैं वो मानू चाहे लड़का चाहे लड़की पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं भी हमारे बच्चे नु यहाँ भी दिक्कत ना हो यहाँ भी दिक्कत ना हो, तो जो हम बच्चे हैं तुम्हारा भी एक फर्ज बना अपने माँ बाप के प्रति, बिना ने मानू जन्म दिया हमारा पालन पोषण करा तो हम भी अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करा, और जो उन्होंने हमारे ते इच्छा है भी हाँ हमारे बच्चे पढ़ लिख का एक अच्छी जगह कहीं देखना चाहवे और जो भी उनकी इच्छा हम वो इच्छा पूरी कर सका।
0: नेहा जी, हम थारे ते एक और गाना सुनना चाहेंगे लेकिन कार्यक्रम का समय और समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे लेंगे हम इजाजत। जय हिंद जय भारत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपने मेरे ते यहाँ बुलाया, जय हिंद जय भारत। और एक मैं आपनु अपना फेवरेट गाना और सुनाना चाहूंगी, मस्त बना

सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 3। आज के मेहमान थे नेहा धाकड़, एडिटिंग व प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप, रिकॉर्डिंग सेजल पुंज, निर्देशन

मन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: प्यार सिखा दूं?
2: सिखला।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। जैसे कि आपको मैं हर बार लघु कथाएं सुनाता हूं, आज भी आपके लिए एक ऐसी लघु कथा लेकर हाजिर हुआ हूं जो आपको न सिर्फ दिल को छू जाएगी बल्कि आपको झिझोड़ कर रख देगी। बेटियों के विषय में लघु कथा हमें भी सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है और हम भी लघु कथा आप तक पहुंचा रहे हैं। शीर्षक कोई विशेष मायने नहीं रखता, आप जो चाहें वो शीर्षक रख लीजिए, जैसा आपकी भावनाएं आपको कहें वैसा आप समझ लीजिए। फिलहाल तो आनंद लीजिए इस लघु कथा का। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए हैं भाई, पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था कि गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वो खाया करते थे ना, तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, बस 15 ही रुपए बचे थे, बाकी रुपए घर की जरूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है, 10 रुपए तो बस के किराए में भी लग जाएंगे। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 तो ठीक है, वरना नहीं लेने। ये सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे, पापा के माथे पर लकीरें उभर आई। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड प्यार भी करती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी भी कि नहीं, तब बाप भी तरसोगे बेटे की फरमाइशें पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उन्होंने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उस छोटी छोटी बातों पर लड़की को सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वो मुट्ठी भर भर के रुपये उनके मुंह में ठूंसते रहे, लेकिन लड़के वालों का तो पेट बढ़ता ही जा रहा था, और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही उन तक पहुंची। आज छटपट आता है कि उसकी वो बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वो चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे, पर वो अच्छी तरह से जानता है कि अब यह असंभव है। क्या दे दूं बाबू जी, गोलगप्पे वाले की आवाज से पापा की तंद्रा भंग हुई। रुको भाई 2 मिनट,

जब तक बेटी हमारे घर है उसकी हर इच्छा जरूर पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो भी पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती हैं ना। जब ससुराल में होती हैं तब मायके जाने को तरसती हैं और सोचती हैं कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और खूब मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है ना तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती हैं, बहुत बहुत खुश होती हैं, भूल जाती हैं कुछ पल के लिए पति को भी ससुराल को भी, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अलग ही कशिश होती है। ससुराल में चाहे कितना भी प्यार क्यों ना मिले लेकिन मायके की तो बात ही कुछ और है। माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती हैं ये बेटियां, ससुराल में कितना भी रोएं पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ये बेटियां, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप और भाई बहन को हिलाकर रख देता है। कितनी अजीब है ना ये बेटियां, कितनी नटखट है, भगवान की अनमोल देन है ये बेटियां। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दें, उन्हें कभी भी ना रुलाएं, क्योंकि अनमोल बेटी दो परिवारों को जोड़ती है, दो रिश्तों को एक साथ लाती है अपनी प्यार और मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहें हमेशा, भले ही वो मायके में हो या ससुराल में। नाजों से

0: की तरह।
1: खुशकिस्मत है वो लोग जो बेटियों के बाप हैं, उन्हें भरपूर प्यार दें, दुलार करें, और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें, क्योंकि वो भी तो किसी की बेटी है ना, और वो अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आप ही से तो हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।
2: तोचु बोजान FM 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रूजियो पनिन पसंदीद बात।

0: सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
1: आज का जो ललवाक माता ललेश्वरी शिव योगिनी का मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण ललवाक है। इस ललवाक में ललेश्वरी कहती हैं, मैं पहले कश्मीरी में आपको बताऊंगा, अकुई ओंकार युस्नाय विदरे, अकुई ओंकार युस्नाय विदरे, कुंभई ब्रह्मांडस सुंगरे, अक्सुई मंथर सतस करे, अक्सुई मंथर सतस करे, तस्सास मंथर क्या करे। लल कहती है जिस ओंकार को किसी ने अपनी नाभि में धारण कर लिया, नाभि मतलब बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे कश्मीर योग दर्शन में। नाभि हमारे सात कुंडलनी चक्रों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, और जब ओंकार की वो ध्वनि और वाइब्रेशन मेरे नाभि में केंद्रित हो जाती है तो ओम ही एक ब्रिज बन जाता है मेरे सेल्फ कॉन्शियसनेस के बीच में और उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के बीच में। हमें उस यूनिवर्सैलिटी का पता लगता है कि मैं अब केवल मैं नहीं हूं, मैं तो इस प्रकृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूं, इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूं। तो जब मैं भी वही बन जाता हूं तो फिर वो कहती है ता सास मंत्र क्या करे, फिर मुझे रिचुअल्स की कोई आवश्यकता नहीं, पूजा पाठ पद्धति यज्ञ इन सब की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। परंतु ये बड़ा जरूरी है समझना कि एक नर्सरी से लेके पीएचडी वाला मॉडल है, यानी शुरुआत तो आपको कहीं से करनी पड़ेगी। और जब वो शुरुआत करते हैं और करते करते करते आप अपनी नाभि में उस ओम को धारण कर लेते हैं तो फिर आप उसी स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पे आपको इन छोटी मोटी पद्धतियों की आवश्यकता नहीं होती। मैं नीरजा जी से कहूंगा कि वो इस ललवाक को अपने सरस्वती के मुखमंडल से हम सब तक

बांधी सबा जाओना नदी के उस पार, पूछ के आओ ना उनसे उनका हाल, क्या करती हैं, कैसी रहती हैं, कैसी सोती हैं, कौन सी करवट लेते हैं वो, उनकी आंखें छू कर आओ ना, उनके माथे को चूम कर आओ ना, उनसे पूछ के आओ ना, वो चुपचाप क्यों रहती हैं, क्या मेरे बारे में कभी सोचती हैं। बादी सबा जाओ न उनके हाथों की लकीरों रेखाओं को पढ़ के आओ न, उनसे जाके कहो न एक बार मिलने आओ न। ऐ बादी सबा जाओ न उनके हाथों की लकीरों रेखाओं को पढ़ के आओ न, उनसे जाके कहो न एक बार मिलने आओ न। ऐ बादी सबा जाओ न नदी

जहां पे मेरी बन आई उसका क्या, उसने तो बस एक नजर देख लिया, पास बैठा दो घड़ी, वादा किया रुखसत हुआ, उसका क्या, उम्र भर तन्हा तो हमने ये जीवन जिया। उम्र तन्हाई अपनी बेजारी पे हम रोते रहे, उसका क्या, उसने तो बस एक गहरा दर्द दिया, आंख में मोती चुने और बरसे उस पर रात भर, उसका क्या, उसने तो बस इश्क में हमको पाकीज़ा किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या, उसने अपनी जात में फिर भी न हमें शामिल किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या, उसने अपनी जात में फिर भी

जिंदगी में तन्हा किसी पल अपनी प्यार भरी आवाज से बुलाना मुझको, जो हो जाओ जिंदगी में तन्हा किसी पल अपनी प्यार भरी आवाज से बुलाना मुझको।

मुझे अब नींद की तलाश नहीं, रातों तक जागना अच्छा लगता है। मुझे है मालूम कि वो मेरी किस्मत में नहीं, मगर खुदा से उसे मांगता हूँ तो उसे मांगना अच्छा लगता है। उसे प्यार करना सही है या नहीं, पर इस एहसास में जीना अच्छा लगता है। कभी हम साथ होंगे या नहीं, पर ये ख्वाब देखता हूँ तो ये ख्वाब देखना अच्छा लगता है। पता नहीं मुझे हक है या नहीं, पर उसकी परवाह करना मुझे अच्छा लगता है। नहीं मालूम कि वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहता हूं तो उसे अपना कहना अच्छा लगता है। नहीं मालूम कि वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहता हूं तो उसे अपना कहना अच्छा लगता है।

गिरी हैं, हर बूंद में तुम्हारी खुशबू की महकार है, और तभी मौतर हुआ है ये जहां। मेरे बरसों के तस्वुर में तुम अचानक यूं दस्तक दे गए, ये मैंने कभी सोचा न था, और ख्याल बनकर उतर जाओगे मेरे वजूद में, इसका तस्वुर मैंने

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

पेश है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 5। पेश करेंगे आरजे गिरनी, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता। सभी दोस्तों को किरणी का प्यार भरा नमस्कार और लेकर आई हूँ सरगम का एक और अंक। और प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म सिलसिला के गाने से, जिसे गाया है अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर ने, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और म्यूजिक से सजाया है शिव हरी ने।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

अब आपकी नजर है राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल, जिसे अपने म्यूजिक से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने और गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है प्रोफेसर प्यारेला।

लीजिए आप सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में ओपी नायर का संगीतबद्ध गीत, जिसके बोल लिखे हैं SH बिहारी ने और फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

लीजिए आप सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का गाना, जिसके बोल लिखे हैं अनजान ने और म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अगली पेशकश है बप्पी लहरी का संगीतबद्ध किया गाना, जिसे गाया है शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने, और जिसके बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने, और फिल्म का नाम है चलते चलते।

कार्यक्रम का अगला नगमा है फिल्म फागुन से, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने, जिसको म्यूजिक से सजाया है ओपी नायर ने और उसके बोल लिखे हैं कमर जलालाबादी ने।

अब आपके नजर है ये एक और नगमा जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है अजनबी और इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसको म्यूजिक से सजाया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है फिल्म हरे कृष्णा हरे रामा से, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, जिसको गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, और अपने म्यूजिक से सजाया है आरडी बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही आज का सरगम कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और अपना फीडबैक भेजते रहिए 7056413010 पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 5, पेश किया आरजे गिरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल ललियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपुरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: पेश है एक खास कार्यक्रम मोहम्मद रफी पर, प्रस्तुत करेंगे रमेश मराठा।
2: हजारों साल नरगिस अपनी बीनूरी पिरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदबर पैदा। ये आवाज सुन रहे हैं आप, जरा पहचानिए तो। ये आवाज आज तलक आपके कानों में रस घोलती आ रही है, आपके दिलों को करार, रूहों को सुकून पहुंचाती आ रही है। ये सदाबहार आवाज किसी तारुफ तारीफ की मोहताज नहीं है, ये आवाज अपनी मिसाल आप है। गर्ज बेमिसाल है, लाजवाब है, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और।

हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का ही अनंदाजे बयां।

मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर सन 1924 को गांव सुल्तान सिंह कोटला अमृतसर में हुआ है। दोस्तों, रफी का आगाज तब हुआ जब के.एल. सहगल, मुकेश किशोर कुमार, तलत महमूद और हेमंत कुमार अरूज पर थे। 6 साल की उम्र से ही उनमें गाने की सलाहियतें नमूदार हुई। तरबियत हासिल करने के लिए आपने लाहौर का रुख किया। लाहौर में आपने अपनी तरबियत बड़े गुलाम अली खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और अब्दुल वहीद खान साहब से हासिल की। लाहौर में ही 16 साल की उम्र में आपने संगीतकार श्याम सुंदर की पंजाबी फिल्म गुल बलोच में बहसती गुलूकार मंजर आम पे आए।

बॉम्बे फिल्म नगरी के एक निर्माता नजीर ने सन 1944 में उनकी आवाज सुनी और फिल्म गांव की गोरी में रफी साहब को गाने की दावत दी। उसके बाद मौसीकार नौशाद अली ने फिल्म पहले आप में आपको एक कोरस में पेश किया।

सन 1947 में फिरोज निजामी ने फिल्म जिगनू में मलके तरन्नुम नूर जहां के साथ आपको गाने का मौका फराहम किया। उसके बाद ये गुलोकार पीछे न देखते हुए आगे की तरफ बढ़ता गया, कहता गया, मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत आगे।

0: 1948 में फिल्म प्यार की जीत का ये गीत एक दिल के टुकड़े हजार हुए मकबूल हुआ। फिल्म बड़ी बहन का गीत मोहब्बत के धोखे में कोई न आए, मौसिकी के शायकीन महफिल की जीनत बनता गया।
1: फलक से तोड़ कर देखो

इसके बाद मोहम्मद रफी के पास फिल्मों की एक लंबी कतार लगी। जैसे मेला, शहीद, सगाई, दुलारी, दीदार, दिल लगी और बरसात, ये सिलसिला सन 1950 तक जारी रहा।

सन 1953 में जब फिल्म बिजू बावरा रिलीज हुई तो रफी की गाय हुई दो भजनों ने कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया। इस तरह से यह बात सिद्ध हुई कि रफी साहब जात पात मजहब और मिल्लत की बंदिशों से ऊपर उठकर फन मौसीकी की खिदमत बखूबी

0: शास्त्रीय संगीत में आपका एक मुनफरिद मुकाम था। सन 1950 से सन 1960 तक आपका दौर गायकी की दुनिया में बेताज बादशाह की तरह रहा।
1: रफी साहब के साथ बहुत सारी यादें होंगी जो आप हमारे सुनने वालों तक इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचाना चाहेंगे।
2: हाँ भाई, रफी साहब मेरे भाई की तरह थे, बड़े अच्छे दोस्त भी थे, मेरे आइडियल भी थे। वो न सिर्फ बड़े अच्छे कलाकार थे, बहुत सुरीले गायक थे, बल्कि बड़े ही खूबसूरत इंसान थे। तो उनका दिल बिल्कुल इतना मोम की तरह था, कभी वो नाराज होते हुए उन्हें मैंने नहीं देखा। इतने बरसों से साथ रहा
1: जी।
2: कई प्रोग्राम उनके मैंने कंपेयर किए, कई बार बातचीत के लिए गया, मिलने गया, कभी मैंने उनको नाराज होते हुए नहीं देखा। हमेशा बड़ी इंकसारी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ वो सबसे मिलते रहते थे, और बड़े पाक इंसान थे। न सिगरेट, न शराब, न कहीं उल्टा सीधा बोलना, कुछ कुछ नहीं। हमेशा शराफत और इज्जत के साथ वो बात करते थे लोगों से, और बड़ी नरमी से बात करते थे, हमेशा मुस्कुरा कर बात करते थे। इसलिए वो हमेशा लोगों के दिलों में बस जाते थे। आवाज के बारे में क्या कहें, वो तो थे ही बहुत ही सुरीले और बहुत जबरदस्त गायक। हर तरह का गाना बड़ी अच्छी तरह निभा लेते थे, और मैंने इत्तेफाक से कई ऐसे शोज भी कंपेयर किए जिसमें और भी कई लोग साथ में गा रहे होते उनके, यानी किशोर या मुकेश या लता और आशा वगैरह सब कई साथ मिलकर भी कई शोज होते थे। तो फिर भी मैं देखता था कि सुरीले सभी होते थे, मन्ना डे भी, लेकिन रफी की जो पॉपुलैरिटी थी वो कुछ और ही थी। तो वो जब गाना शुरू करते थे झूम कर, तो जब सब बच्चे सब खड़े होकर झूमने लगते थे। एक बात और थी कि जब भी वो जाते थे किसी शो में, तो बड़े साहब वो इंसाफ पसंद थे। मतलब ये कि वो हमेशा कहते थे, मुझे जिस क्लास में प्लेन में तुम ले जाते हो या ट्रेन में ले जाते हो, उसी क्लास में तुम मेरे सारे यूनिट को ले जाओ। ऐसा ना हो कि मुझे फर्स्ट क्लास में रखो, बाकी को सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में रखो। होटल में भी वो कहते थे, जिस होटल में मैं रहूंगा उसी होटल में सबको रखिए। यूनिट उनके साथ काम करने वालों का वो भी उन पर फिदा था और बहुत इज्जत करता था उनकी।
1: अमीन साहब, कोई ऐसा इंसिडेंट जो बिल्कुल आपके दिल के करीब है रफी साहब के साथ?
2: इंसिडेंट ऐसा रफी के साथ एक ही बड़ा अजीब सा इंसिडेंट रहा, या यूं कहिए कि नहीं रहा, वो ये था। तो मैंने करीब करीब सभी लोगों को इंटरव्यू किया, एक दो तीन लोग बड़े जो मेरे करीब थे वही रह गए, उनमें से एक थे रफी। अब रफी क्यों रह गए कि मैं कई बार उनके पास जाता था कि रफी भाई मेरा प्रोग्राम चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इसमें बोले, तो कहते थे नहीं यार, वो क्या है कि मैं तो गाने वाला हूँ, क्यों बुलवाते हो मुझसे खाम खा, तुम एक काम करो
1: जी।
2: जब मैंने बहुत जिद की तो कह रहे तुम एक काम करो, तुम कोई ऐसा प्रोग्राम करो जिसमें मुझे बोलना ही ना पड़े। तो मैं उलझन में पड़ गया कि यार ये कैसी बात है। तो खैर वह सोचता रहा, तो इसमें कई बरस बीत गए, और फिर मैंने कोशिश की कि कहीं अगर मेरे पास मेरे लिए नहीं बोलते तो किसी और के लिए बोला होगा। तो सारी दुनिया से मेरे दोस्त बहुत हैं ब्रॉडकास्टर्स, कई सारी दुनिया में फैले हुए, तो मैंने कोशिश की कि रफी का कोई इंटरव्यू मेरे हाथ लग जाए
1: जी।
2: तो कई लोगों ने इंटरव्यू भेजे रफी के, लेकिन उसमें यही था कि वो हाँ हूँ, बहुत अच्छा, हाँ मजा आया, बस इतना बोलकर वो रुक जाते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। बस ज्यादा से ज्यादा एक 25 सेकंड या 20 सेकंड के जुमले मुझे मिल जाते थे, तो एक दो मैंने बजाए, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाया। तो आखिरकार मैं उनके पास गया एक रोज, रफी भाई ये आपने उलझन में डाल दिया, आप कैसे करें आपको इंटरव्यू। कहने की सीधी सी बात है, तुम ऐसा सवाल करो जिसका जवाब मैं गाकर दे दूंगा
1: जी।
2: मैंने कहा चलो डन, हो जाएगा। और मैं लग गया घर आकर उसके बाद उस टाइप का इंटरव्यू प्लान करने में, लेकिन तब तक बहुत बरस बीत चुके थे, उनकी तकदीर ने मुंह फेर लिया और वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तो उन्हें कभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन इत्तेफाक से एक हुआ ये था कि एक बार मैं दादा बर्मन की मौत पर तमाम बड़े बड़े संगीत सितारों का इंटरव्यू ले रहा था गीतमाला के लिए, तो सबको रिकॉर्ड किया। रफी साहब को रिकॉर्ड करने में गया, लेकिन रिकॉर्डिंग जो हुई उन्होंने स्टूडियो से बाहर आकर की ओपन एयर में। एक तो कुछ बोले नहीं ज्यादा, दूसरे वो कुछ वहां कुत्तों की आवाज आ रही थी भौंकना, और कौओं की आवाजें आ रही थी, तो मैंने उसको इंटरव्यू थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, वो क्रैप कर दिया और नहीं बजाया।
1: जी
2: मगर उन्हीं दिनों मेरे भाई साहब का, हमीद भाई का इंतकाल हुआ था, तो मैं ज्यादा अटेंड नहीं करवा रहा था। रफी साहब का ये प्रोग्राम बाकी लोगों की आवाजें भर के मैंने रिकॉर्डिस्ट को दे दिया कि चलो इसको मिक्स करके तुम भेज देना रेडियो सिलोन। तो हुआ ये था, जिसका बाद में मुझे पता चला कि मेरे राइटर जो थे रियाज सैयद साहब, बहुत अच्छे काबिल राइटर थे, तो मेरी गैर मौजूदगी में वो गए रफी साहब के घर और कहने लगे साहब अमीन साहब तो आपको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मैं गुजारिश करता हूँ थोड़े कुछ जुमले बोल दें आप दाता बर्मन के बारे में, तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका।
1: जी
2: तो उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया और वो रियाज साहब वापस लाकर मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने रिकॉर्डिस्ट को भी दिया, और वो इंटरव्यू उनका ट्रिब्यूट टू बर्मन दादा वो ब्रॉडकास्ट हुआ, जो मुझे जिसका पता ही नहीं चला कई वर्षों बाद तक। तो वही एक मेरे मेरी अपनी रिकॉर्डिंग में बस वही एक चीज मेरे पास है रफी की कही हुई, बर्मन दादा और जय किशन और मदन मोहन जैसे लोग इस दुनिया से जाते रहे तो हमारा संगीत तो सुना हो जाएगा, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा
1: जी
2: था।
1: अमीन साहब, रफी साहब का कोई ऐसा गाना जो रफी साहब के दिल के बिल्कुल करीब था?
2: भाई एक गाना है, वैसे तो उनके कई गाने मुझे बहुत पसंद हैं, मसलन गाइड की बहुत गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन एक गाना जो उनके दिल के भी करीब हो और मेरे दिल के भी करीब उनकी याद आते आते हुए, वो गाना है रोशन साहब के म्यूजिक में फिल्म चित्रलेखा का,
1: जी
2: कि मन रे तू काहे नदिये धरे, और एक एक जुमला उसमें बड़ा अच्छा था, एक एक एक पंक्ति एक मिसरा साहर ने लिखा था कि कोई न संग मरे, तो ये हमें हमेशा इत्मीनान दिलाता है कि भाई मौत तो आनी है सबके लिए, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ जिंदगी में कि मौत के बाद भी हमारी याद जिंदा रहे, और यही बात रफी साहब ने कायम रखी अपने जाने के बाद भी। आज भी उनके गीत बजते हैं और हम उन्हें सुनते हैं और खुश होते हैं और अपने जीवन में रस घोलते हैं, और वो सुकून आता है उनकी आवाज से कि हाँ भाई एक इंसान था जो नेक भी था, शरीफ भी था और सुरीला भी था, और हमारे दिल में आज तक बसा रहा है और हमेशा बसा रहेगा।
1: रफी साहब ने लगभग हर संगीतकार के साथ काम किया, अनिल बिस्वास, श्याम सुंदर से लेकर हुसन लाल भगतराम, नौशाद से लेकर एस डी बर्मन, मदन मोहन से लेकर ओ पी नैयर, शंकर जयकिशन से लेकर कल्याण जी, आनंद जी, रवि से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन से लेकर बप्पी लहरी तक।

रफी साहब अशार अल्फाज की बारीकियों और किरदार की नजाकतों को मद्देनजर रखते हुए अपनी आवाज का जादू जगाते थे और ऐसे ही अदाव अंदाज से लाखों परिस्तारों के दिलों पर राज

कुछ गीत रफी ने इस तरह से गाए जिनमें उम्र की कोई बंदिश नहीं थी, जैसे तस्वीर बनाता हूं फिल्म दीवाना से। बड़ी देर भाई फिल्म बसंत बहार से, ऐसे तो न देखो फिल्म तीन देवियां से, सुहानी रात ढल चुकी फिल्म दुलारी से, मन मोरा बावरा फिल्म रागनी से, न किसी की आंख का नूर हूं फिल्म लाल किला से, जो बात तुझ में है फिल्म ताजमहल से, रोशन तुम्ही से दुनिया फिल्म पारसमनी से, फिर वो भूली सी याद फिल्म बेगाना से।

सूफी साहब में एक खास बात यह भी थी कि वो अपनी आवाज को किसी भी सांचे में डालने की, किसी भी रस में पेश करने की सलाहियत रखते थे। खाओ शहनशाही जज्बात दिलीप कुमार हो या मस्ताना देव आनंद, उछलता कूदता शम्मी कपूर हो या पारंपरिक भक्ति रस में डूबा हुआ भारत भूषण, हास्य रस में नहाया हुआ जॉनी वॉकर या महमूद हो, गरज यह है कि रफी ये तमाम सलाहियतें रखता था।

ये सही है कि मोहम्मद रफी आज नहीं है, लेकिन उसकी आवाज आज भी कई संगीत प्रेमियों की जीने का सहारा बन चुकी है। कई नए कलाकारों के लिए मशले राह साबित हुए हैं और उन्होंने रफी साहब के अंदाज को अपना कर अपना लक्ष्य तय किया है।

0: सन 1971 में रफी साहब गायकी की दुनिया में सरफिरिस्त रहे और इसी साल आप हज पर चले गए।
1: खुदा अपने बलियों से होता है राजी।
0: हज के फराइज अंजाम देने के बाद मौसीकी की दुनिया को अलविदा किया और आप अपने फर्जंद के साथ लंदन में कयाम करने लगे। इस फनकार की गैर हाजिरी को सामीन ने बर्दाश्त नहीं किया और रफी को गायकी की दुनिया में वापस लाने में कामयाबी हासिल की।

मोहम्मद रफी ने चंद एक ममालिक को छोड़ सारी दुनिया का दौरा किया। रफी न सिर्फ एक महान गायक कलाकार ही थे बल्कि अजीम शान शख्सियत के मालिक भी थे। वो सादा नरम तबीयत और खुदा का खौफ रखने वाले इंसान थे। वो

रफी साहब ने 36 सालों में तकरीबन 26,000 मुख्तलिफ हिंदुस्तानी भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। आपको 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और आपने पद्मश्री एजाज भी हासिल किया।

महफिल चाहे तन सुमिजा की हो या दर्द वालम की, चाहे इश्क आशिकी या सूफियाना महफिल, रफी साहब हर महफिल को अपनी मधुर आवाज से सरशार करते रहे। रफी साहब जैसे कलाकार एक ही बार हयात पाते हैं।

0: रफी ने अपने जमाने के लगभग सभी को सिंगर्स के साथ काम किया। लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, शमशाद बेगम, सुरैया, मीनू परशोत्तम और सुलक्षणा पंडित।
1: तुम अकेले तो कभी बाग में जाए।
0: और ये सभी गाने मकबूल भी।

31 जुलाई सन 1980 को फनी मौसीकी के अंबर से एक चमकता सितारा वक्त की गर्दिश में न जाने कहां खो गया, जिसे आज भी और साल तक परिस्तारों की निगाहें तलाशती रही।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा, आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

दस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

यो FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: You are listening FM 90.0 megahertz radio vitasta hum safar zindagi ka Ambala Kent's first community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting Government of India
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन

0: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 3। आज के मेहमान हैं नेहा धाकड़, प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप।
1: हम सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का। आज मैं था रहते रूबरू हूँ कार्यक्रम घर परिवार में। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त दीपक कश्यप। आज हमारे मेहमान हैं नेहा धाकड़। नेहा जी, थारा स्वागत है FM 90.0 MHz पर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, जो आपने मेरे तो ये मौका दिया और मनु यहाँ बुलाया। मेरा नाम नेहा धाकड़ा और हम फतेहपुर गांव में रहा, और जो मेरी स्टडी है वो मैंने प्लस टू नगला स्कूल, जो मेरे गांव के थोड़ी दूर था, वहां से करी। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपनी मास कम्युनिकेशन ते गवर्नमेंट PG कॉलेज अम्बाड़ा कैंट ते करी। उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा कराया PG DGMC मास कम्युनिकेशन का ही पंचकूला गवर्नमेंट PG कॉलेज Sector 1 ते। उसके बाद फिर मैंने PT की, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश।
1: तो नेहा जी, आज का हमारा विषय है आज का युवा। जैसा कि आपने बताया कि हम गांव में थे पढ़ने वास्ते बाहर जहाँ थे, जिस तरह आज का युवा पढ़ने वास्ते बाहर जहा, तो उसनु किस तरह कितने साधन आवा या किस तरह जहा आवा?
2: जिस तरह मैंने अपनी सारी स्टडी जो भी मैंने पढ़ाई करी वो गांव थे बाहर शहर में का ही करी, तो मतलब आज के टाइम में साधना का बहुत पर्याप्त मात्रा में मतलब साधन है गांव में। जिस तरह पहला एक बस हो एक राती बस, उसका टाइम था भी 8 बजे आना सवेरी, जिस तरह बच्चे कॉलेज में जहाँ थे जो भी यूनिवर्सिटी जहाँ भी पढ़ रहे थे स्कूल कॉलेज में, तो उसके बाद वो 2:30 बजे या फिर 5 बजे ऐसा टाइम था उसका। लेकिन आज के टाइम में गाँव में दो दो बसा लग रही, ऑटो वगैरह मतलब मैजिक सारी चीजा की फैसिलिटी है। और आज के टाइम में एक फैसिलिटी हो रहा है कि आज घर घर में साधन है, जैसे मोटरसाइकिल या कार वगैरह या स्कूटी वगैरह, मतलब हर घर में साधन है। आज के टाइम में फैसिलिटी ज्यादा मिलने लगी बच्चे नू, और जिस तरह बच्चे गांव में शहर में पढ़न आवा तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं होती।
1: जब लड़के लड़कियां पढ़ने वास्ते दूर जहां, तो उन्हें कुछ मुसीबत का सामना भी करना पड़ा?
2: हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने भी अपनी सारी 5 साल स्टडी बाहर ही करी है गोमा ते शहर में आई, तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि बस वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा हुआ। और इस चीज में मैं कहूंगी कि लड़कियां नु ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, मुश्किल का सामना इस टाइप ते करना पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने पहला भी बताया कि लड़के लिफ्ट लेकर जा सका लेकिन लड़कियां लिफ्ट लेकर नहीं जा सकती। तो जैसे भीड़ हुआ बस में बहुत बहुत, तो फिर जैसे लड़के हुआ वो तो बाहर भी बारी पर भी लटक का चले जाएं, लेकिन लड़कियां उसमें लटक नहीं सकती। कई बार बसा नहीं मिलती तो उन्होंने बसा के पीछा भागना पड़ा। कई बार ऐसी सिचुएशन हुआ भीड़ के अंदर जिसमें मैं शायद शब्द में नहीं बयां कर सकती, और उस चीज नु सिर्फ वही समझ सका जिसने चीज फेस करी हो। क्योंकि मैं जैसे मैंने कॉलेज में पढ़ी तो फिर मैं बसा में ही मेरा आना जाना था, तो उस चीज नु वही इंसान समझ सका।
1: तो इसका क्या समाधान हो सका?
2: हाँ, लड़कियां नू बहुत ही मुश्किल हुआ जैसे बसा में, तो इसका यही समाधान है कि मतलब लड़कियां वास्ता कोई अलग ते बस की सुविधा होनी चाहिए जिसमें सिर्फ लड़कियां लेडीज औरतें ही ट्रैवल करा, और मतलब जैसे कंडक्टर हुआ बस की तो मतलब लड़की हो, ताकि उन्होंने कंफर्टेबल फील हुआ कि हाँ मतलब किसी टाइप से वो अपने आप नू यूं ना महसूस करा भी हाँ हम यहाँ खड़े या कुछ ऐसा। और मतलब इसके लिए कुछ टाइम तक ये सर्विस मिली भी, कुछ बस चलाई गई जिसमें सिर्फ लेडीज ही ट्रैवल कर रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सर्विस बंद कर दी जा। और एक सिस्टम हो रहा मतलब जैसे बस की बारी हुआ तो मतलब ऐसा सिस्टम कर लें कि जो फर्स्ट वाली बारी उस पर सिर्फ लेडीज ही मतलब चढ़ांगी बस में, जो पिछले वाली बारी उसमें बॉयज या जेंट्स ये चढ़ सका। तो मतलब इस टाइप से कुछ सिस्टम बनाना चाहिए ताकि जो हमारी लड़कियां हैं या हमारी औरतें उन्होंने पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना हो और वो अपनी पढ़ाई नु अच्छे तरीके से आगे तक लेकर जा सके।
1: तो जिस तरह आप बस में पढ़ने जहाँ थे, बस में सफर कराते, तो वहाँ आप किस तरह टाइम अपना स्पेंड करे कराते?
2: हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह मैं अपने गांव ते यहाँ बाड़े वास्ता हूँ थी तो थोड़े टाइम का ही रास्ता हुआ था, उसमें मैं मतलब यही कि सॉन्ग सुन लिए या कुछ जैसे अपनी स्टडी से रिलेटेड पढ़ लिया, कुछ करंट अफेयर मेरे पास सब्जेक्ट था तो मैं न्यूज़पेपर ले लूँ थी बस स्टैंड से, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ती आंदी रहूँ थी रस्ते में। लेकिन कई बार जैसे न्यूज़ पढ़ का भी बंदा तो कई बार जैसे न्यूज़ पढ़ ली उसके बाद फिर मैं कुछ सॉन्ग वगैरह सुन लूँ थी। और जैसे मैंने पंचकूला करी अपनी पोस्ट ग्रेजुएट तो वो बहुत ही लंबा सफ़र था, और उसके साथ साथ ही मैं गाने सुन लिया करूँ थी, इंजॉय करे अपना सफ़र।
1: अच्छा, तो आपका कोई फेवरेट सॉन्ग मारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे आप?
2: बिल्कुल, मैं ज्यादा मतलब जो गीत होते हैं वो जैसे हिंदी भी सुन लो या फिर पंजाबी, जैसे मेरे फेवरेट सिंगर सतिंदर सरताज जी और एमी विर्क जी हैं, तो मैं सतिंदर सरताज जी का एक सजन राजी गाना थोड़ा सा आपनू सुनाना चाहूंगी। प्यार हुंदा फुल्लां तो मलूक सोनिया, जिवें हुंदी मोरनी दी कूक सोनिया, दूर किते जंगलां च नचदी फिरे, शहर तक सुन जांदी।

0: चला अपने कार्यक्रम की तरफ। जब आप कॉलेज में पढ़ा थी तो आपके पास कौन कौन से विषय थे?
1: जी मैंने जिस तरह ग्रेजुएशन भी जनसंचार ते करी है, मास कम्युनिकेशन ते, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी, तो मेरे पास यही सब्जेक्ट थे जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटोग्राफी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, करंट अफेयर, यही सब्जेक्ट्स थे मेरे पास मेन। और मैंने मतलब इन्हीं सब्जेक्ट्स में अपनी स्टडी करी है, तो स्टडी के साथ साथ मैंने एक्टिविटी जो कॉलेज में परफॉर्मेंस हुआ थी उनमें भी पार्टिसिपेट करा, जैसे डिबेट होगी, भाषण प्रतियोगिता होगी और कविता होगी, और जैसे मेरे पास कॉलेज में जैसे NCC होती है, NSS होती है, तो मैंने NSS में भी पार्टिसिपेट कर रखा था, और उसमें जैसे कैंप वगैरह लगाते तो मैं उनमें भी जाऊँ थी।
0: घर में अपना समय क्या करने में बितावा आप? जो आपके पास आपका खाली समय हुआ किस तरह बतावा?
1: जी जिस तरह मेरा खाली टाइम हो, आज जिस तरह पहला तो मैं अपने घर का काम करूँ, सारा झाड़ू पोछा अपना, सारा जितना भी काम हो घर का एक, तो उसके बाद जैसे फिर फ्री हो जहाँ काम करने के बाद, तो जैसे मैं अपनी कोई स्टडी से रिलेटेड या मतलब जो मेरा प्लानिंग है फ्यूचर में उससे रिलेटेड मैं कुछ काम करूँ, मतलब कोई बुक्स वगैरह या कुछ भी जो भी पढ़ना होगा उसके लिए वह करूँ। फिर उसके बाद मतलब मैं कुछ टाइम अपना एंटरटेनमेंट करने वास्ता जिस तरह सॉन्ग सुनूंगी या कोई मूवी देखूंगी, फनी मूवी, कोई मूवी वगैरह देख लिया तब भी टाइम नहीं स्पेंड हो रहा, तो मैं यूट्यूब से कोई रेसिपी देख लूँ नवी की, कुछ नया बनाया जा कुछ अलग सा, इस टाइप में अपना टाइम स्पेंड करूँ।
0: तो आपने खाने में क्या क्या बनाना हुआ?
1: खाने में जिस तरह अपना रोटी सब्जी है तो सारा ही आवा, जैसे कोफ्ते या रायता या फिर कढ़ी चावल, मक्की की रोटी होती है वो भी बना लेती हूँ, गेहूं की रोटी तो चलो सभी बना लेते हैं, मतलब सारा काम जो भी रसोई का काम होता है सारा काम कर लेती हूँ मैं।
0: कभी कुछ आपने बनाना कुछ और चेहरे या बन गया कुछ और, ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई या?
1: हाँ जी बिल्कुल, मेरी साथ मतलब अभी कुछ टाइम पहले एक घटना हुई थी, जैसे मैं ना मतलब सोच रही थी बहुत, मम्मी ने बोला अभी खाना बना लो आप, तो उस टाइम मैंने दाल बनानी थी, जैसे मूंगी मसरी की दाल हो अपनी, तो वो दाल बनानी थी मैंने, तो मूंगी की तो डाल ली, फिर उसके बाद मैंने उसमें डालनी थी मसरी की, लेकिन उड़द की डाल दी, वाइट उड़द वहाँ जो, तो फिर मैंने देखा मैं कि इसका कलर तो वाइट है, डालनी तो मैंने संतरी ऑरेंज कलर की थी, तो फिर सोचा अब क्या करूं, फिर मैंने वो भी डाल दी, तो वो तीन टाइप की दाल हो गई, तो फिर मैंने जैसे वो दाल बन गई तो मैंने मम्मी को पहले ही बता दिया, मैं कहा मेरे पते आज गलती हो गई यार, मैंने यह दाल तीन टाइप की बना दी, तो कह रही चलो कोई नहीं, जब उन्होंने खाई तो उन्होंने अच्छी लगी, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि गलत किया यूं किया।
0: तो थारी कोई फेमस रेसिपी जो आज थारे घर के अनु बड़ी पसंद हो?
1: बिल्कुल हाँ, मतलब जो मेरे रिश्तेदार आवा या मतलब मेरे फैमिली वाले, उन्होंने मेरे खीर पूड़े बहुत ही ज्यादा पसंद है, कि मतलब जैसे मेरी सिस्टर जिनकी शादी होगी है ना, तो वो जैसे बोलना तो कह रही भी नेहा इबम एरे मतलब घर तो खीर पूड़े बना दे अपने हाथ के, मनु वो बहुत पसंद आ। उसके साथ ही मतलब मैं और सारी चीजें जैसे गुलगुले हुआ अपने वो भी बना लूं, मतलब और भी सारी रेसिपी बना लूं, लेकिन जो मशहूर है जो मेरी रेसिपी वो खीर पूड़े ही है, तो मेरे रिश्तेदार सब या मेरे फैमिली वाले खीर पूड़े मेरे बहुत ही पसंद करा, तो खीर पूड़े बनाने वास्ता हमनू पहला जिस तरह खीर हुआ, तो खीर वास्ता दूध नू रखो गैस पर या चूल्हे पर जिस पर भी आप बना रहे, तो दूध नू उबाल, जब तक उसमें उबाल नहीं आता तो उसमें चावल ना पाओ, जैसे चावल मतलब एक तो चावल हुआ मतलब लंबे वाले, लेकिन उसमें ना किणकियां वाले चावल यूज करने चाहिए, उसकी ज्यादा टेस्टी बना खीर, जब उसमें दूध में उबाल आ जाए तो उसमें जो किणकियां वाले चावल है उसनू पानी में अच्छे तरीके से धो का थोड़ा टाइम पहला भगो का रख दो उसनू, ताकि वो अच्छे हो जाए मतलब गल जा, तो फिर उसनू चावल नू डाल दो खीर के अंदर, फिर उसनू पकाओ बिल्कुल, जब तक ना चावल और दूध आपस में मिल ना जा तब तक वो गैस बंद ना करो, हल्की आँच पर उसनू पकाते रहो, उसमें ड्राई फ्रूट डाल सका, काजू जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, किशमिश वगैरह, और जो ये तो खीर बन गई जैसे हमारी, तो फिर पूड़े वास्ता आप क्या कर सका, जैसे आटा लो पहला गेहूं का आटा हुआ, तो गेहूं के आटे में आप जैसे चीनी का, चीनी की चाशनी या फिर आपके घर शक्कर की चाशनी या गुड़ उसकी चाशनी ऐड करो, तो आटा मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा करड़ा भी नहीं होना चाहिए और पतला भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा आटा होना चाहिए, ताकि जैसे हम उसनू तवे पर गिरेंगे तो आराम से उठ सका, तो उसनू मिक्स करके आप उसमें काजू बादाम डाल सका, अगर आपकी इच्छा इलायची छोटी इलायची कूट का इलायची डाल सका, फिर उसनू आप तवे मतलब तवा बिल्कुल ही अच्छे तरीके से साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर तवे पर बिल्कुल कुछ रह गया मतलब तवा साफ ना करेगा तो वो जो हमारे पूड़े वो तवे से उठने के नहीं है, वो वहीं चिपक जाएंगे, तो तवा अच्छे तरीके से धोना होना चाहिए, और फिर उसनू पूड़े नू हम जो आटे का गोला उसनू हम तवे पर गेर दें, और फिर उसनू सारे तवे पर फैलाने वास्ता जैसे हम तो यूज गाँव में तो जो जामण का पत्ता हुआ उसनू यूज करा, जामण के पत्ते दे उसनू सारे तवे पर फैला दे, फिर उसकी साइड में घी तेल जो भी आपके पास है वो डालना, फिर उसनू उठा लें हल्के दे, और फिर इस तरह हमारे पूड़े तैयार हो जाओ।
0: क्या आप हमारे श्रोताओं को कोई और अपना मनपसंद गाना सुनाना चाहोगे?
1: जी बिल्कुल, जैसे मैं पंजाबी सारे ही गाने सुनो, हिंदी पंजाबी, तो मतलब हरियाणवी एक सॉन्ग है वो भी मैनू बहुत ही अच्छा लगा, जिप्सी सॉन्ग है वो, हरियाणवी सॉन्ग।
0: तो क्या आप हमारे श्रोता वास्ता थोड़ा गुनगुनाना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हो सहजो।

0: हम सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो दस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमारा आज का कार्यक्रम है घर परिवार। तो नेहा जी, आज का जो युवा है वो टेक्नोलॉजी का कितना प्रयोग करा और कितना जुड़ा है उससे?
1: जी बिल्कुल, आज का जो युवा वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहा। आज के टाइम में मतलब जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्होंने जो भी मटेरियल चाहिए पढ़ाई के रिलेटेड अपना सर्च करो और सारा मटेरियल मिल जा। और जिस तरह जो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, जिस तरह मैं पूछना भी पुराने टाइम में मिट्टी के बर्तन हो एक रहते उनमें क्या खाना बने करा था कुछ भी, तो हम अगर सर्च करांगे तो उसमें बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी और मतलब पता लग जाएगा भी हाँ मिट्टी के बर्तन का कैसा कैसा प्रयोग हो अतर क्या क्या उनमें दाल सब्जी बनावा थे। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई और युवा बहुत ज्यादा इसका यूज कर रहा। युवा भी लगा लो, आप बुजुर्ग भी लगा लो, सब इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं आज के टाइम में।
0: तो जिस तरह हमारा आज का युवा टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी है हमारी जिंदगी पर?
1: जी बिल्कुल, वही मतलब एक बात दीपक जी मैं आपनु कहना चाहूंगी भी हर चीज के दो पहलू हुआ, एक सही हुआ एक गलत हुआ, एक अच्छा हुआ एक बुरा हुआ। तो ऐसी टेक्नोलॉजी में इसके भी दो पहलू हुआ, एक अच्छा एक बुरा, इसनु दो तरीके ते ही ले रहे हैं मतलब अच्छा और बुरा। तो जिस तरह यूज कर रहे इसनु मतलब हाँ इसमें बहुत अच्छी चीजें भी आवा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी आवा जो शायद जो देखने लायक नहीं होंगी। तो मतलब युवा जैसे कोरोना के टाइम की मैं बात करूं, ऑफलाइन पढ़ाई तो बंद हो गई थी तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी। तो स्कूल में बच्चों नु फोन दिए गए टैब 10वीं और 12वीं वाले नु, तो बच्चा ने मतलब वो सिर्फ पढ़ने वास्ते दिए गए थे उसमें, उस टाइम वो ऐप थी जिसमें सिर्फ पढ़ाई की बात करी गई थी उनकी क्लास से रिलेटेड, लेकिन बच्चा ने उसमें उसके अंदर सोशल मीडिया और अलग अलग ऐप डाउनलोड कर लिए, गाने सुनना, या मतलब बच्चे उस चीज पर बहुत ज्यादा गलत की तरफ लेकर चले गए। मतलब दिए थे तो वह सही यूज वास्ता लेकिन उसमें गलत यूज कर लिया उन्होंने। तो टेक्नोलॉजी का गलत यूज भी हो रहा है कहीं ना कहीं, मैं कहूंगी आज के टाइम में।
0: तो जिस तरह हमारे गांव के बच्चे हुआ या किसी भी स्कूल के बच्चे हैं, तो वो स्कूल में जहा और वे गेल फोन लेगा जहा, तो क्या है वो ले जाना अच्छा?
1: नहीं बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं अपनी बात करूं या मेरे टाइम थे थोड़े टाइम की पहला, तो अगर मतलब बच्चे के पास अगर फोन मिल जाता स्कूल में तो उसने बहुत पनिशमेंट दिया थी, बहुत ज्यादा मतलब उसने घर उसके बताया जाता भी हाँ इसके पास फोन मिला। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो बच्चे मैं देखूं, जैसे मैं ट्रैवल करूं बस में भी या मैं जैसे अपने कॉलेज टाइम में मैंने देखा, तो बच्चे फोन का यूज बहुत कर रहे और जो स्कूल के 10वीं 12वीं के बच्चे वो भी फोन लेकर स्कूल में जा रहे हैं। ये फोन ले जाना स्कूल टाइम में, जैसे मैं बात बताऊं जैसे 10वीं 12वीं यही बच्चे का एक बेस हो आ जहाँ उसने कुछ करना या आगे बढ़ने की प्लानिंग करा भी हाँ, लेकिन वो बेस यहीं ते खराब हो जा। फोन में ध्यान दे रहे तो फोन में वही सोशल ऐप या फिर म्यूजिक, तो उसी गेम खेल रहे हैं। बहुत सी गेम बैन भी करी गई, बच्चे बहुत ज्यादा यूज करने लग गए थे, गलत लग गए थे करने अपने साथ। तो इस टाइप से बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। तो मतलब जब बच्चे फोन का यूज कर रहे तो माँ बाप नु भी देखना चाहिए भी मेरा बच्चा फोन में क्या देख रहा क्या नहीं। तो यह ड्यूटी मतलब बच्चे की नहीं, एक माँ बाप की भी बना कि उसनु अपने बच्चे के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चा फोन कब तक यूज कर रहा क्या देख रहा, और एक लिमिट होनी चाहिए फोन देखने की, है ना। यूं नहीं कि बच्चा सवेर ते फोन देख रहा शाम तक देखता ही रहा देखता ही रहा, अगर उसनु फोन ना दे तो वो रोन लग जा कि मैं फोन नहीं दिया मैनू। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, माँ बाप नु भी थोड़े रूल रेगुलेशन करने चाहिए बच्चे के प्रति।
0: तो थम भी एक युवा या और आज के युवा नु आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी हाँ बिल्कुल, मैं भी एक युवा हूँ तो मैं युवा होने के नाते यही संदेश देना चाहूंगी कि जो हमारे माँ बाप हैं वो मानू चाहे लड़का चाहे लड़की पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं भी हमारे बच्चे नु यहाँ भी दिक्कत ना हो यहाँ भी दिक्कत ना हो। तो जो हम बच्चे हैं तो हमारा भी एक फर्ज बना अपने माँ बाप के प्रति, बिना ने मानू जन्म दिया हमारा पालन पोषण करा, तो हम भी अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करा और जो उन्होंने हमारे ते इच्छा है भी हाँ हमारे बच्चे पढ़ लिख का एक अच्छी जगह कहीं देखना चाहवे और जो भी उनकी इच्छा वो इच्छा पूरी कर सका।
0: नेहा जी, हम थारे ते एक और गाना सुनना चाहेंगे, लेकिन कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे लेंगे हम इजाजत। जय हिंद जय भारत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने मेरे ते यहाँ बुलाया। जय हिंद जय भारत। और एक मैं आपनू अपना फेवरेट गाना और सुनाना चाहूंगी, मस्त बना

सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 3। आज के मेहमान थे नेहा धाकड़। एडिटिंग व प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप। रिकॉर्डिंग सेजल पुंज। निर्देशन भारत सोपोरी।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा, आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

सुनिए बप्पी लाहिरी के दिल छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
3: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउन जो
2: रेडियो वितस्ता
3: असले पौन पटाके
2: सुन मेरे दिलदारा 90.0 मेगा।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर

ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शमी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम की तलाश

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

फिल्म कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शम्मी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शम्मी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शम्मी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शम्मी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शम्मी को बुलाकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी मानी।

फिल्मों में अपनी दिलकश अदा के जरिए दर्शकों के दिलों पर कई दशक तक राज किया। उनके फिल्मी गाने और डायलॉग आज भी मशहूर हैं। उन्होंने फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, लेकिन उनके रोमांटिक रोल आज भी फिल्मों में जीवंत लगते हैं। सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी कामयाब फिल्म रही। उनके अपोजिट थे आशा पारेख।

0: अय्या सुकु सुकु
1: अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु।
2: रफीक की आवाज उन पर सटीक बैठती थी। अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
3: कोई मुझे जंगली कहे कहने को जी कहता रहे।

गीता बाली का सन 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी जीवित।

0: तुम रहती हो।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
2: उस पथ

0: एक ही तलच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: है दिल।
1: सभी सुनने वालों को किरनी का प्यार भरा नमस्कार। कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा।

0: गए हम।
1: प्यार का एक सुरीला नगमा है जिंदगी, सांसों की रफ्तार कहती है जी लो इसे, कल ये समा हो ना हो।

खुशबू तेरी मुझे महका जाती है, तेरी हर बात मुझे बहका जाती है। सांस को बहुत देर लगती है आने में, हर सांस से पहले तेरी याद आती है।

0: हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

दिल में एक तूफान सा उठ गया, उसने मुस्करा के देख लिया, वो हुस्न मुद्दसम कातिलाना खूबसूरत है। मैंने जो उसे देखा, सारी बजम ने उसे देखा।

दिल दे के जान लेने वालों पे नादान जमाना हंसता है, दिल की बस्ती का लुटेरा तो तेरे ही मन में बसता है।

मोहब्बत की सल्तनत पर आज हमारा आधा आधा है, कभी न छूटेगा साथ यही वादा है। और इसी वादे के साथ दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।

वहम गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

को मेरा आदाब। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत बन गई। मैंने तुम्हारे चेहरे से इसे चुरा लिया है। यहां इन घने अब्र आलूद मौसमों में तुम छिप जाते हो और कोसीकजा का दामन थाम लेते हो। अक्सर बादल के टुकड़े दयारों में बदल जाते हैं और अनदेखी बस्तियों को राहत बख्शते हो, हरारत से महफूज रखते हो। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत क्यों बन गई।

बेशक परस्तिश में वक्त गुजरता जो तुम रूबरू मुझे अपनी पहचान कराते। रिश्तों को जताती, मेरे जज्बात को अपनी पनाह में महफूज रखते, अपनी इबादत दुआओं में मुझे शामिल करते। मैं जानता हूं मैंने बे इंतहा प्यार किया है तुमसे, जिसकी गवाही आसमां में तैरते बादल हमेशा से देते आ रहे हैं।

मौसम आए मौसम जाए, पर सदियों से तुम न आए। तुम आकाश थे रोशनियों के, सफर में हम सफर थे मील के पत्थर थे। इन प्यार की सरहदों के निगहबान थे, मेरी हर कोशिश की शुरुआत थी, मेरी हर सुबह की पुकार थी। कितने ही मौसम आए कितने ही मौसम जाए, क्या कभी तुम लौट आए?

वो था पानी का बुलबुला जो बनता रहा मिटता रहा। कभी हथेली पर ठहरा नहीं, कभी जमीन पर उड़का नहीं, कभी बादल बना तो कभी शबनमी बूंद। मैंने उसे तैरते पानियों में बनते मिटते बिखरते देखा, इन खामोशियों में फना होते हुए देखा। शायद वो गुजरे कल का तस्वीर था जो कभी लौटता नहीं, जो कभी लौटता नहीं।

मैंने सुना है यहीं से गुजरता था वो जो कभी मेरे छत पे आकर तारों को गिनता था, चांद की परछाई से लिपटता था, नदामत भरी आंखों से मेरी बेबसी, मेरी लाचारगी को अपने पास महफूज रखने की कोशिश में हमेशा से ही मसरूफ, अपने दुपट्टे से अपने ही चेहरे को ढकना, ये उनकी फितरत में शामिल है। दिल के ठहरे हुए पानी में पत्थर ना फेंको, चांद का अक्स बनाया है, बिखर जाएगा।

आहट क्यों आकर रुक गई मेरे आंगन में, एक परछाई क्यों मुझे छूने को है बेकरार बेताब बेताब। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक एहसास आज भी है पलता मेरे वजूद मेरे जीवन के हर हिस्से में, कि कोई तो है, कि कोई तो है जो अभी भी रिश्तों को बरकरार बनाए रखे हुए है।

आप सुन रहे थे रेडियो विकासता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। आज के हमारे प्रसारण अब यही समाप्त होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रहते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और रेडियो होस्ट कृष्णा। चाहूंगी आपसे आज्ञा, मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई उमंग के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।